0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: सर एक बिफुन से नु सा एक बिफुन से नु ए मा दामी लामु एहे ए बा मी बिफुन से नु एजो ए मा दामी लामु सा एजो
1: सर एक आले सर ए ओरो टेस्ट